0: ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
2: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
3: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
4: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
5: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee.

0: अदालत ने कुलदीप सिंह की गवाही को महत्वपूर्ण माना, लेकिन ये भी कहा कि उसके कुछ हिस्सों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। सीबीआई ने 1996 में तत्कालीन तरनतारन एसएसपी अजीत सिंह संधू सहित 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। संधू के खिलाफ आरोप तय होने से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। अन्य अधिकारियों पर अपहरण, आधिकारिक साजिश और हत्या सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा चला। साल 2005 में पटियाला की अदालत ने कई अभियुक्तों को अपहरण का दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई, जबकि डीएसपी जसपाल सिंह और एक अन्य अभियुक्त को हत्या के आरोप में उम्र कैद दी। मामला बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। साल 2007 में हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त को बरी कर दिया, लेकिन 4 अन्य दोषियों सतनाम सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, जसबीर सिंह और प्रीतिपाल सिंह की सजा 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान पंजाब पुलिस ने सीबीआई को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अपने सहयोगियों को बचाने के लिए एक तरह का गठजोड़ बना लिया था, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हुई। जांच के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि सिर्फ तरनतारन जिले में ही 984 शवों का अंतिम संस्कार लावारिस के रूप में किया गया था, जबकि 1996 की अंतिम रिपोर्ट में राज्य भर में 2097 अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार का उल्लेख किया गया। अदालत ने इन मामलों की निगरानी करते हुए सीबीआई को आगे की जांच और आवश्यक आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। जसवंत सिंह खाल्ला का मामला भारत में मानवाधिकार, पुलिस जवाबदेही और न्याय व्यवस्था से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मामलों में गिना जाता है। उनकी हत्या का रहस्य पूरी तरह कभी नहीं सुलझ सका, क्योंकि उनका शव बरामद नहीं हुआ, लेकिन अदालतों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। ये मामला आज भी इस बात का प्रतीक माना जाता है कि मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की निष्पक्ष जांच और राज्य की जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस फिल्म को ओटीटी से क्यों हटाया गया। ये फिल्म Z5 पर रिलीज हुई थी। Z5 ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि रिलीज के बाद सतलुज को दर्शकों का जबरदस्त प्यार और समर्थन मिला है। हम सतलुज और उससे जुड़े रचनात्मक नजरिए के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगले आदेश तक सतलुज भारत में उपलब्ध नहीं होगी। फिल्म को जल्द से जल्द दोबारा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित विकल्पों पर काम किया जाएगा। वहीं फिल्म में जसवंत सिंह खाल्ला का किरदार निभा रहे दिलजीत सिंह दोसांझ ने एक्स पर पोस्ट किया, अब यह फिल्म रुकने वाली नहीं है, खाल्ला साहब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता।
1: इन्हां बंदियां ने सारिया ने उतर के ते खाल्ला साहब नूं अबडक्ट करके ते वैन च पा लिया। मैं इंटरवीन करने की कोशिश की थी, अहीं एसएसपी साहब दे दफ्तर जिथे को खुद आ जाने आ। पंजाब एंड सिंध बैंक दे मैनेजर दा ते उन्हां दे गनमैन दा कतल जिहड़ा सी ओह मेरे ते पाया गया। मेरे ते ट्रैक तोड़न दा, रेलवे दे ट्रैक तरन तारन अमृतसर ट्रैक दे उत्ते ओह पाया गया, ते इहदे कारण उन्हां दा इको है वी तूं खाल्ला केस दे विच गवाही ना दे।
2: राजीव सिंह रंधावा अमृतसर के कबीर पार्क इलाके तो 6 सितंबर 1995 नूं मनुखी अधिकार कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा नूं अगवा कीते जाण दी घटना दे चश्मदीद गवाह हन। खालड़ा दे जीवन उत्ते आधारित दिलजीत दोसांझ दी मुख भूमिका वाली फिल्म सतलुज ने उन्हां दीआं यादां नूं मुड़ ताज़ा कर दिता। हनी त्रेहन वालों डायरेक्ट की गई यह फिल्म कई सालां दीआं रुकावटां तों बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 उत्ते नवें नाम हेठ रिलीज़ हुई सी, पर हुण इस नूं अगले नोटिस तक भारत विच हटा दिता गया। राजीव सिंह रंधावा दसते हैं कि उन्होंने खालड़ा नूं अगवा करन आए लोगों नूं रोकण दी कोशिश कीती सी।
1: 6 सितंबर 1995 नूं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे सामने कबीर पार्क कलोनी उहदे कोठी है जसवंत सिंह खालड़ा दी, और ड्राइंग रूम च मैं बैठा होया सी ते बाहरों खालड़ा साहब अपनी टाटा मोबाइल कार च धो रहे सी ते पंजाब पुलिस दे जो बंदे अफसरां दे नाल आए ते स्काई ब्लू वैन ते उहदे पिछे इक जिप्सी सी। इन्हां बंदियां ने सारिया ने उतर के ते खालड़ा साहब नूं अबडक्ट करके ते वैन च पा लिया। मैं इंटरवीन करने की कोशिश की थी, अहीं एसएसपी साहब दे दफ्तर जिथे को खुद आ जाने आ अपनी कार जी अपने स्कूटर ते, पर उन्हां साडी कोई गल नहीं सुनी ते उठा के लै गए। रमजीत कौर खालड़ा, वाइफ ऑफ जसवंत सिंह खालड़ा, उन्हां दे नाल गए ते इस्लामाबाद थाने जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, पर उन्हां ने साडी मतलब सुनी। तीसरे दिन जाके रिपोर्ट दर्ज कीती ते उहदे च वी लिखता भी पुलिस की वर्दी के खाड़कुओं ने चुकया हो। पर फिर अं 9 तरीक

0: है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
0: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
0: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
0: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 एफएम।
3: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
4: सबको सुन रहे जी, जो कुछ बोले हैं एयर दे नाल नाल फेसबुक ते भी, ते आज दे प्रोग्राम च एक बार फिर तो स्वागत करते हैं साडे स्टूडियो च, क्योंकि दो डॉक्टर मौजूद ने ते दोनों दे नाल कोई स्पेशल मुद्दा ही होएगा जिदे करके पहुंचे इन्हां दे नाल गलबात करनी है। अपने भाईचारे दे डॉक्टर ने बट काम बहुत वधिया कर रहे हैं, लोगों नूं तकलीफां तों मुक्त कराउंदे आ बेसिकली, क्योंकि डॉक्टर ते कई तरह दे हुंदे आ। सो इन्हां दा जिहड़ा काम है वह लोगों नूं पीड़ मुक्त करना, मतलब पीड़ा तो निजात दवानी है। तो अक्सर लोग जो ज़्यादा पीड़ित च हुंदे ने तो फिर इन्हां दे क्लीनिक च जांदे आ। इन्हां ने एक क्लीनिक शुरू किए ने, जगह जगह के उत्ते क्लीनिक ने। मैं चाहवांगा थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन पहले इन्हां दे नाल करके फिर आप अपनी गलबात जी है जी अगे वधाने। फेसबुक वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी, अज प्रोग्राम च आप लाइव ही नाल नाल कर रहे हैं। तो मेरे नाल बिल्कुल नाल बैठे ने डॉक्टर अरुण गुप्ता, जेडे कि बहुत जानी मानी शख्सियत ने यूनिवर्सिटी दे विच, प्रोफेसर भी ने, इस तो अलावा क्लीनिक्स भी चलांदे अपने। सो आई विल नाल बैठे ने जी सनी दोपर जी, डॉक्टर सनी दोपर, जेडे कि एक अपनी कम्यूनिटी पहले भी तुसी इन्हां नूं मिल चुके, आशा सर्कल चलांदे आ, ते उस दे अधीन इन्हां ने काफ़ी वधिया मूवमेंट भी जिहड़ियां शुरू कीतियां। सो अज दे सर्कल च पहला थोड़ी जी मैं चाहवांगा पहला सनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर देते हैं शुरुआत में, फिर उसके बाद हम आगे।
5: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन अगेन। आपने हमारे को लाइक बहुत टाइम सपोर्ट करा है और आप हमारे को लाइक हमेशा बुलाते हो जब हम ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलूंगा जस्ट बिकॉज इट विल बी इजियर। बट हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं बिकॉज़ हम यहाँ पे लोकली कैलगरी के अंदर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे काम करते हैं हम बहुत टाइम से हैं। अरुण गुप्ता तो बहुत बहुत टाइम से मेरे से ज्यादा, मैं यहाँ पे यूएस से 2020 में आया था, ये मेरे से पहले आए हुए हैं, बहुत टाइम से लाइक यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस स्पेसिफिकली जो है वो लाइक एमएसके मेडिसिन में होती है, तो लाइक अगर आपकी कहीं पे दर्द हो रहा है, अगर आपने कहीं पे चोट लगा दी है, तो लाइक हम हैं जो आपको देखते हैं, हम डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं स्पेशलिस्ट की जगह प्रोसीजर्स के साथ। जैसे आप अगर कोई इंजरी है जो ठीक नहीं हो रही है, या कोई कंडीशन जैसे अर्थराइटिस है या सायारिका है जो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उन चीज़ों के अंदर हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका डायग्नोसिस बनाने में, आपको जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं जिससे आप ठीक हो सको वो करने में, अगर आप दवाइयां नहीं खा पा रहे हो।
4: बहुत अच्छा ही, तो मैं चाहूंगा वी विल लाइक टू नो लिटिल बिट अबाउट यू। सो हु इज डॉक्टर अरुण गुप्ता और व्हाई ही इज डूइंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स बाय हीलिंग द पीपल?
6: Well, thank you very much. Thank you for the introduction for both of you. It's been a pleasure to be here today. So why do we do this? First of all, everyone deals with pain. Initially, when I started thinking about what I wanted to do as a professor,

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-68।

0: Yes.
1: It's important to choose the right dietary composition, meaning what kind of foods do we eat and the types of foods. And you'll see that there are very many vegetarians who are overweight. So how can you see that naturally occurring if that's the case? Well, even when you're eating vegetarian and if you have more certain butters or, you know, you're eating your rotis and your parontas with extra ghee on it, that's not going to make it, but you're still vegetarian.
0: Yeah.
1: So vegetarian doesn't equate to equal better health. But, you know, so and then the second part becomes choosing the right proteins. There's always a competition in the science that says, you know, is it meat proteins better or vegetable proteins better? And we're still learning those processes, and there's arguments on both sides of the equation for that. But vegetarian does not necessarily equal a healthier lifestyle, because it's the type of calories you eat and the type of activities that you participate in.
0: Yeah. So it has to be like a well-rounded diet. You can stay a vegetarian and be healthy, but just being a vegetarian doesn't mean you're healthy.
2: बिल्कुल सही है ये बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं पता चल रहा है कि भी कई बार आप कहने में आप वेजिटेरियन हैं तो आप हेल्दी हैं बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ नहीं होता खांदे की वो इम्पोर्टेंट दर किधो खांदे हो तो कैडियन चीज़ खांदे हो एक्सरसाइज किन्हीं कर दे हो तो किधन तो और दे पाज दे हो तो प्लस आई लर्न स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच वी आर स्लीप बिकॉज दीज आर टू फैक्टर्स पीपल इग्नोर मोस्टली when I don't sleep well like 4 or 5 hours then I feel I have a extra weight just like that whenever I start sleeping little bit more then my weight goes down automatically even though I am eating the similar kind of things so I think sleep te stress jehdi hai eda vi bada dhyan rakhna
0: that's cortisol aap jo baat kar rahe ho aapka cortisol badhta hai stress ke sath कोर्टिसोल के साथ शुगर बढ़ता है शुगर के साथ पानी ज्यादा रहता है आपको ज्यादा ब्लोटिंग होती है आपको ज्यादा हैवीनेस फील होती है आप ठीक से सोते हो आपका कोर्टिसोल कम होता है सब कुछ अच्छा जाता है
2: बिल्कुल जी बिल्कुल तो आई थिंक सम ऑफ टाइम इज वेरी लेस नाउ तो क्विकली हम वो इवेंट के बारे में भी बात करें माइक आप एडजस्ट कर लो कैमरे को देखे
0: So, हमारी प्ली है कि हम आपको सबको बुला रहे हैं आशा सर्कल के हिसाब से कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए हमने आशा सर्कल का जो 90 डेज का स्ट्रॉन्गर चैलेंज चुना है वो इसलिए चुना है कि हम बस चाहते हैं कि सब लोग एक चीज करिए आपको सारी चीजों के साथ एक साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है आप एप्पल स्टोर पे जाइए जो फोन पे होता है एप्पल की एप्स के ऊपर वहां पे 90 डेज स्ट्रॉन्गर की ऐप है ashacircle.com के ऊपर भी लिंक है और आप वहां पे जाके रजिस्टर करिए रजिस्टर के बाद आपको बस उसके अंदर हर दिन जाके लॉग इन करना है कि वो उसको सिंक कर रहा है और आपके आपके स्टेप्स सिंक हो रहे हैं जब आप अपने स्टेप्स देख रहे हो हम चाहते हैं कि आप उन स्टेप्स को बढ़ाओ 10, 100, 1000 जितना भी बढ़ाना चाहो आप बढ़ाओ वी वॉन्ट यू टू वॉक विथ अ मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पर डे सो दैट वे यू कैन सी द चेंजेस योरसेल्फ एंड बाय डूइंग दैट एज अ कम्युनिटी we can at least move forward towards improving these health data together.
2: Very wonderful example ji bahut badhiya message tana ne yes
1: I can't say stress that enough I think first of all the app is very easy to download and start I did it myself this afternoon and it was great it has it's really to help you get information and help us get that process rolling what Dr. Jupar is saying is Can you take a few extra steps every day? And those few extra steps every day will add up to something greater over time. And so that's what you really want to see is the few steps will lead to a larger goal being achieved. And why do we need to do it is because we've got to make sure that our community and our team around us and the families and people are all learning the importance of exercise, injury prevention, and health improvement and optimization before it becomes a problem.
2: That's a wonderful message. The app jadi Asha Circle te jaake 90
0: days stronger.
2: 90 days stronger jada hai 90 da sign baneya ode te.
0: Yes.
2: So 90 te tusi main vi download kiti a few days ago. So 90 days stronger app jaake tusi so on iPhone iOS or both.
0: सो आईफोन पे जो आपका एप स्टोर है उसके अंदर तो आ गया है जो एप्पल का एंड्रॉयड है उसका जो

0: रिव्यू प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है, तो जब गूगल उसको अप्रूव करेगा तो वो उस पर भी आ जाएगा.
1: बिकॉज वी ऑल्सो डिवेल्प एप सो आई नो इट टेक्स टाइम समटाइम दे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट दे सेड ब्रिंग मोर स्टफ दैट्स व्हाट इज हैपनिंग बट iOS ते दोनों दे उत्ते ही एंड्रॉइड दोनों दे उत्ते तनु ए ऐप मिलेगी राइट नो सिर्फ एप्पल फोन से उत्ते तनु मिलेगी एप्पल स्टोर ते ते उत्ते रजिस्टर्ड करके तुसी ते डेली तुरना मतलब 10 जिन्ने भी स्टेप कह रहे ने बट आई बिलीव कि 1% मोर वी शुड डू एवरी डे.
0: I love that.
1: Right? So we are not slowing down. We are
0: going speeding up.
1: 1% more. So it is very easy. Yada karo ta di marzi hai, but ek step jarur rakhe badna.
0: Jo sabse best practice hai, aap apna khana khate ho. खाने खाने के बाद आप 15 मिनट की वॉक कर लो. आप 15 मिनट की वॉक करने से आपका जो शुगर कम होगा और उसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अमेजिंग है.
1: बिल्कुल. और ये सारी बातें जो है जब 90 डेज का खत्म होने वाला होगा तो आई थिंक उस सेमिनार में या प्रोग्राम में बात भी करेंगे.
0: यस, हम वापस आएंगे, हम आपको सबको बताएंगे हाउ प्राउड वी आर. हम स्पॉन्सर्स भी ले रहे हैं, हम देखेंगे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपके अंदर. वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट गिफ्ट्स फॉर पीपल टू मेक श्योर वी ऑनर द पीपल हु टुक पार्ट एंड वी वांट That हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को इनकरेज करे कि ये हमारे लिए अच्छा है.
1: बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मैसेज है. तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू
1: आने के लिए.
2: थैंक यू
1: एंड वंडरफुल टू हैव यू बोथ इन द स्टूडियो. तो बड़ा अच्छा लग रहा है. आई थिंक कंटिन्यू करते रहे बट टाइम उतना ही रहता है. थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक
1: यू. एक छोटी जी ब्रेक लेनी है जी. ब्रेक तो बाद फिर वापस मिलते हैं. स्टूडियो दोस्त जुड़े ने फेसबुक भी टाटा बाय बाय. इस ब्रेक
3: फीमेल फैमिली फिजिशियन का स्वागत करता है.
4: गर्म जोशी समझदारी ते प्यार नाल वो तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउन लई हमेशा तैयार है.
3: हुण तुसी उना नाल इंग्लिश हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच भी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो.
4: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने. अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो.
3: कॉल करो 587-360-6890 लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक. वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक.
4: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890.
3: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी.

0: ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल राधा।

0: सिंह विचार चर्चा शाम 8-9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM
2: मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 7 टू 8 PM संडेज 1 टू 5 PM
1: विजिट sabrang.ca
3: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ।
1: आज फिर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस कुछ ना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फिर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी अज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तों जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
6: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
5: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।

0: पूरे वर्ल्ड में, इसका नाम है और कनाडा का अपना एक स्टेटस है स्पीड स्केटिंग के अंदर, लेकिन एक हिंदुस्तानी ने इसके अंदर अपना नाम बनाया है और यहां पर इस समय कैलगरी में वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नाम है चंद्रमौली दांदा जी। वो और उनके फादर साहब हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो आइए उनसे उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि क्या इस गेम की रूपरेखा है। चंद्र, वेलकम टू द शो एंड जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार अमर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अरे हम, हमारा सौभाग्य कि आप यहाँ पर आए और चंद्र को यहाँ पर लेकर आए, बिकॉज एक बहुत बड़ी हमारे लिए यू नो इट्स काइंड ऑफ ऑनर कि इतना बड़ा जो एथलीट है वो इंडिया से यहाँ पर हमारे स्टूडियो में है, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत धन्यवाद,
2: थैंक यू फॉर हैविंग अस।
0: So Chandra, let's talk about your journey first, starting from your childhood, right? Will you be comfortable talking in English or Hindi is okay?
2: Hindi
0: थोड़ा कम है, no worries.
2: चलेगा.
0: That's great. देखिए, हम when we are growing up, especially in back home, right? The only games what we see is cricket, hockey, maybe soccer somewhere, or a little bit of badminton. But this is a very different and you know, very unique sport what you chose. What made you choose this sport, especially living in India?
2: I actually started as an roller skater in India at first when I was 7. I started off with at a summer camp. Actually, I was introduced to roller skating. Eventually, I got really good at it, and then my dad also wanted me to be competitive in it. So eventually, we started training competitively and also also racing. And then my dad also further thought it would be really nice to race in the Olympics. So we wanted to chase, we wanted to think big and chase that big Olympic dream. So we and since roller skating is not an Olympic sport, we had to switch, we had to pivot sports a little, and we had to. We had to pivot sports, and the closest thing to inline skating was ice skating. In fact, was speed skating.
0: Right.
2: So we slowly like tried to see if we could make the change, and eventually from roller skating, we made the switch to ice skating.
0: Roller skating is still a kind of you know seen sport, right? You see people roller skating, you see people you know doing different kind of stunts. I've not seen people you know like myself, I've not been to any kind of you know competitive arena where people are doing competitive sport with the roller skates, but like you have, like I've seen it. But this speed skating on ice, especially when you are in India. And I think, which part of India you are from?
2: I'm actually from south of India, from Andhra Pradesh.
0: Andhra Pradesh. So, in South India, it's not even snow anywhere near, right? So, it becomes a little bit very, you have to be very, very outgoing and very, you know, different kind of mental state where you will think that, yaar, roller skate nahi hai, mujhe snow pe aana hai. तो इस पे मैं आपसे दोबारा बात करता हूं, बट आई विल टॉक टू योर डैड। सर, सबसे पहले तो ये बताइए साथिया जी कि ये आपके बेटे ने तो चुन लिया, नाउ व्हाट मेड यू कि यार इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्लेस वेयर ही कैन यू नो गो एंड प्रैक्टिस, स्पेशली ऑन लाइक यू नो विद द एरिना वेयर देयर इज स्नो एंड यू नो ही कैन कम्पीट एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। सो व्हाट मेड यू think that you can do that?
1: जैसे चंद्रा बता रहा था, तो पहले एक्चुअली वो रोलर स्केटिंग करता था
0: जी,
1: एंड रोलर स्केटिंग पे ही बिकेम इंडियन नेशनल मेडलिस्ट
0: जी,
1: जी। उसके बाद हमें पता चला कि रोलर स्केटिंग ओलंपिक में है ही नहीं। अगर हमें अगर बड़ा बनाना है, इफ आई वॉन्ट टू लाइक नो आई ऑलवेज ड्रीम लाइक थिंक बिग ड्रीम बिग,
0: क्या बात,
1: अगर हम थिंक बिग ड्रीम बिग सोचेंगे एंड ये स्पोर्ट अनफॉर्चुनेट रोलर स्केटिंग जो है वो अगर ओलंपिक में है ही नहीं तो आगे क्या कर सकते हैं। देन मैंने दो दिन देखा, एक्चुअली देन पता लगा कि आइस स्केटिंग ओलंपिक्स में है, इसीलिए रोलर स्केटिंग ओलंपिक्स में नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो देन हमें लगा तो अगर हमें बड़ा करना है तो हमें रोलर स्केटिंग छोड़ के आइस स्केटिंग की तरफ बढ़ाना है,
0: बढ़ाना पड़ेगा।
1: बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जैसे बता रहे थे हम साउथ इंडिया से है, इंडिया में आइस स्केटिंग बहुत ही कम है वहां पे एक्चुअली,
0: बिल्कुल।
1: देन हमें लगा कि अगर इंडिया में रहेंगे तो आइस स्केट सीख नहीं पाएंगे, देन हमें चुनना पड़ेगा ऐसा एक विंटर कंट्री जहां पे आइस स्केटिंग हो। Then I'm very thankful to my organization, मैं IT में करता हूँ actually, so because of that

0: आई थिंक नो आई कुड गेट ए चांस टू कम टू कैनेडा. दे सेड कैनेडा में अपॉर्चुनिटी है, आप जाना चाहोगे वहां पे कर सकते हो. देन हम इंडिया छोड़ के लाइक स्टार्टिंग चेजिंग आवर ड्रीम्स, ड्रीम को आप भाग चेज करते रहो करके. देन इंडिया से दैट्स द रीजन लाइक अगर आइस स्केटिंग करना है तो इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा. तो हम कैनेडा आए थे एंड शुरू में पहले हम टोरंटो पे थे एक्चुअली. जैसे आए कोविड आ गया, कुछ नहीं कर सके एक्चुअली, दो तीन साल ऐसे रुके रहे. बट स्टिल वो जो अंदर जो था जज्बा तो करना है, हमें दिखाना है दुनिया को, वी हैव टू शो समथिंग दैट रियल आई थिंक यू नो मूव्ड अस अ लॉट. एंड हम डटे रहे, ये भी आई थिंक यू नो जितना हो सका उतना यू नो उसने भी प्रैक्टिस करा एक्चुअली. तो आप जैसे बता रहे थे आइस स्केटिंग में दो तरह होता है, एक शॉर्ट और होता है एक लॉन्ग ट्रैक होता है. दोनों का जो डिफरेंस है, शॉर्ट ट्रैक मतलब 111 मीटर की होता है और जो लॉन्ग ट्रैक है वो 400 मीटर की होता है.
1: जी.
0: एंड भले इंडिया में आइस स्केटिंग कम है लेकिन कनाडा में ये बहुत बड़ा स्पोर्ट है. आप अगर देखना चाहेंगे अभी का जो स्टैम्पीड का जो मार्शल है एंड शी इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन स्पीड स्केटिंग.
1: अच्छा.
0: तो इस बार उनको मतलब आप सोच सकते हो अगर कैलगरी स्टैम्पीड में मार्शल बनाया मतलब जितना बड़ा गेम है कनाडा में.
1: जी जी.
0: इट इज वेरी बिग स्पोर्ट इन कनाडा एंड हर साल एवरी ओलंपिक्स में कनाडा को मेडल्स आते रहते हैं.
1: जी.
0: सो दैट मेड अस यू नो मूव स्टार्ट चेजिंग आवर ड्रीम एंड देन मूव फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इन सर्च ऑफ द ड्रीम टू मेक इट बिग. एंड शुरू में हम दो साल कनाडा पे टोरंटो पे प्रैक्टिस किए थे.
1: जी.
0: एंड देन जैसे बता रहा था यहाँ जो लॉन्ग ट्रैक का जो एरेना है
1: जी.
0: वो पूरी कनाडा में दो है, एक क्वेबेक सिटी में है
1: जी.
0: और दूसरा कैलगरी में है.
1: जी.
0: अगर हमें लॉन्ग ट्रैक में करना है तो वी हैव टू मूव टू इधर ऑफ द प्लेसेस एंड अगेन द वे सेड चेज आर ड्रीम.
1: जी.
0: फिर हम टोरंटो छोड़ के फिर कैलगरी आ गए है क्योंकि यहाँ पे एरेना है.
1: जी.
0: एंड लकीली उसका नंबर भी सही था, उसका जो स्पीड भी अच्छा था.
1: अच्छा.
0: एंड ही गॉट पिक्ड अप बाय द ओलंपिक ओवल जो बोलते हैं यहाँ पे, विच इज राइट इन द यूनिवर्सिटी के अंदर जो है.
1: जी.
0: एंड वहीं से ही आपका जो नेशनल टीम ऑफ कनाडा उधर से ही चुने जाते हैं. सो दे पिक ऑल द टॉप स्केटर्स अक्रॉस कनाडा, दे ग्रुप अप इन कैलगरी एंड वहां से उनका ट्रेनिंग शुरू होता है. And luckily he got into that top zone and he got selected by the you know the Olympic oval team and now he is practicing along with that team wherein Canada ka jo national team hai वो भी उधर ही प्रैक्टिस करता है.
1: सत्य जी हम फास्ट फॉरवर्ड में चले गए, थोड़ा सा कम बैक आएंगे. नो वरीज एट ऑल. आप फ्लो में थे, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि एज अ पेरेंट एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि आप अपने बच्चे के ड्रीम के लिए सब कुछ छोड़ के अपना घर अपना देश और एक ऐसी जगह पे आ जाएं. ठीक है, उनको डेफिनेटली उनकी कंपनी ने सपोर्ट किया, लेकिन इंसान अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है ये फैमिली आपको बताती है. तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि बीच में हमारा जो बातचीत है वो हम इंटरप्ट करें एड्स की वजह से. जो इनके साहबजादे हैं अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते और मेरे ख्याल से जो हमें लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो जरूर हमारे इस शो के थ्रू जान पाएंगे. वो इंडियन नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं जूनियर मेन के अंदर 500, 1000, 1500, 3000 एंड 5000 मीटर्स और सीनियर मेन में 1500, 3000 और 5000 मीटर्स की जो रेस होती है उसके अंदर उन्होंने वो रिकॉर्ड होल्डर है. मैं चंद्रमौली की बात कर रहा हूं. और अब जैसा कि उन्होंने बताया उनके फादर साहब ने कि उनको ओलंपिक के लिए जो टीम है कनाडा की उसके अंदर भी पिक किया जा चुका है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर वो उसके अंदर पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाते हैं अपने हार्ड वर्क की वजह से. ऑन्टेरियो विंटर गेम्स 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया. ओंटेरियो विंटर गेम्स 2020 इन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग में कैनेडियन नेशनल चैंपियन फॉर कंसेक्यूटिव थ्री टाइम्स अंडर 18 में रोलर स्केटिंग में जब यहां पर आए उन्होंने शुरू किया तो उसमें इन्होंने मेडल्स जीते. तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इंडियन इस एक ऐसी स्पोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं जो कि मे बी अपने हिंदुस्तान में इतनी पहचान के लायक नहीं है लेकिन कनाडा में जो उसका रुतबा है वो बहुत ऊपर है. हम वापस चलते हैं चंद्रा के ऊपर.

0: happens, it happens.
1: That is amazing, and so proud of you to hear that. And second thing, never even think that that will not happen. That will happen. That is our dream. That is your father's dream. And every Indian will dream the same thing for you, that one day you will represent and you will win medal for us in Olympics. That is something we starting from today, at least I will dream. And our team will be there to support you always. That is really, really great. So, dosto, aap agar sun rahe hain Chandra ko, to इस छोटी सी उम्र में भी उस बच्चे के अंदर ये जज्बा है कि जो माँ बाप ने किया है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे इस चीज को अपनी हिम्मत बनाना है, अपनी ताकत बनाना है और उसको आगे लेके जाना है एक ऐसी स्पोर्ट के अंदर जो कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत नई है और बहुत हिम्मत लगती है, बहुत जज्बे की जरूरत होती है इस ऐसी गेम के अंदर आगे बढ़ने के लिए. नाउ दिस इज एन इंडिविजुअल गेम, राइट? Or there are team events also in this game?
0: There are two team events in long track speed skating, the team sprint and the team pursuit. It's a three-person event. The team sprint is only a three-lap distance, while the team pursuit is an eight-lap distance.
1: Okay. So you're preparing for both short and long?
0: I'm just focusing only on long track.
1: Okay.
0: But except I'm only a sprinter as well, so the main distance I'm focusing on is the shorter ones, the 500, 1000, 1500, and the team sprint as well. Hopefully, if we have more people in the future, which one other athlete is training in Salt Lake City, so hopefully in the future there'll be more athletes from India, so we can actually have a proper team event as well.
1: That's amazing. Satya ji, ये अगर आपके साहबजादे ओलंपिक के लिए पिक होते हैं और जाते हैं, तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि विल ही बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया और ही विल बी रिप्रेजेंटिंग कनाडा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: दैट्स डेफिनेटली गुड क्वेश्चन अमित जी, बट या वी विल डेफिनेटली गो विद इंडिया.
1: ओके ओके. सो दो ही इज training over here, and if the people over here say no, if he's training, then he should be representing Canada. So do you think that will be a kind of thing that will not be good, or how you take that?
2: Yeah, definitely. I think it's duvida mein hai,
1: duvida mein rahega, right?
2: Definitely,
1: right.
2: Duvida mein rahegi. But I'm so grateful to Canada. This is a country I think more friendly for immigrants. We really appreciate the kind of gesture what they show towards us as an immigrants. But yes, yahan pe training yahan pe karenge, lekin agar participate karna hai to India ki taraf se hi karenge. जैसे बता रहा था, यहाँ पे कनाडा से बहुत सी ऑलरेडी मेडल्स है, बट इंडिया की तरफ से इफ ही गेट सेलेक्टेड देन ही विल बी द फर्स्ट एवर इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इनटू विंटर ओलंपिक्स फॉर आइस स्केटिंग.
1: दैट्स अमेजिंग. भारत की जो सरकार है उसकी तरफ से कोई सहायता आपकी तरफ आई है?
2: In terms of monetary wise, not yet, but in terms of logistics, others actually, definitely we are so grateful to the Indian Ice Skating Association of India, Mr. Amitabh Sharma ji. Definitely, I think he's helping us a lot in terms of logistics and other, I think, supportings. But yeah, monetary wise, definitely, I think, kyunki ye abhi ubharta hua sport India mein bhi hai. So he's trying his level best to get some kind of a support, but as of now, I think not yet actually.
1: What about the gear, Chandra? What about you? Like, what do you think the gear, what you get right now, are they world class and that is the best you get from, you can buy and you can have those with you?
0: Yeah, thanks to my parents, they did not spare any expense and they made sure that I had the best gear so I could compete internationally as well, especially in the New Senior World Cup. Last December as well, they did not spare any expense and made sure that I got the very best equipment.
1: That's great. So, दोस्तों आप सुन सकते हैं कि किस तरह से जो एक पेरेंट्स की जर्नी है वो अपने बच्चे को लेके इतनी दूर एक दूसरे देश में आए उस स्पोर्ट को फॉलो करने के लिए जो हमारे देश में नहीं खेली जाती, लेकिन आज भी उनमें जज्बा यही है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे. तो अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप यू वांट टू गिव और एनी काइंड ऑफ वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस अमेजिंग स्पोर्ट थ्रू चंद्रा, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट सत्या जी एंड बी देयर टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट, स्पेशली व्हेन इट

0: And
1: this one right here is from the roller skating marathon in 2024.
0: Amazing.
1: Sorry, 2022 actually.
0: Okay.
1: This one is the national championship gold as well in 2021.
0: Mm-hmm.
1: And this one is also gold national championship in 2020. And this is the silver from Ontario Winter Games in 2020.
0: Amazing, amazing. That's amazing. दोस्तों कितनी खुशी होती है जब हमारे बच्चे इस तरह के मेडल्स लेते हैं. कुछ साल पहले आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गो टू लेह एंड लद्दाख विद वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ओलंपिक चैंपियन फ्रॉम कैनेडा. और उनके साथ में जब गया तो वो उनका नाम हेली विकनाइजर है, जो कि हमारे एक इंडियन टीम को, जो कि आइस हॉकी टीम थी, उनको वहां से लेके आए और अपने विक फेस्ट में पार्टिसिपेट करवाया. तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मुझको कवर करने का मौका मिला. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सेम ओवर हेयर वेयर आई कैन यू नो कवर चंद्रा स्टोरी एंड हिज यू नो हिज सक्सेस. दैट विल बी ग्रेट. साथ योर फ्यू वर्ड्स फॉर बिफोर वी एंटर दिस प्रोग्राम.
2: डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी इस मौके के लिए. एंड यू नो वी आर रियली थैंकफुल फॉर यू फॉर दिस इंटरव्यू. एंड अपने दर्शकों के लिए डेफिनेटली ऑलवेज ड्रीम बिग, मेक इट बिग एंड यू चेज अंटिल यू अचीव इट.
0: That's amazing. So, दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली 94.7 FM पर. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ. जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
3: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने तीन टाउन हाउस. एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने. बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका. फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन. वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो इमी नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते. बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है.
4: ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ.
5: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ.
4: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ.
5: ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ. ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408.
4: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ. हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.

0: हो गया गाना सुनती हूँ बस कैलगरी च कार लैन दी फीलिंग आई ले जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होने दा मन बना लिया है ओना दे आउन तो पहला मेनू कार चाहिदा है
1: मेरी कल ही गल हो रही है रियल्टल जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुन कार एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
0: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम करदे जग्गी ते लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी ते लो दा फोन नंबर है
2: 403-436-6000 or 403-406-2004.
3: आज फिर भी लोड मिलया
0: की होया
3: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन
4: ओहो रह गए ना फिर पीछे मैं सुनया है सोने के इंश्योरेंस दे मानस पहुंचा अते रमन वड़ाच ते उना ते टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंदी है ते ओ ता पोर्टल ही सेट कर देंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001 सोनिक इंश्योरेंस
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुन कनाडा दे विच तुहाडे सपने सच होण दा समा आ गया कनाडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदण लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757
6: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स

0: समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: दोस्तों अभी आपने बातचीत सुनी एक बहुत ही अमेजिंग एथलीट की और उनके फादर साहब की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे की ड्रीम के लिए यहां पर आ गए। और आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं आप लोग जरूर इंस्पायर हुए होंगे और कहीं ना कहीं आपको अपनी किसी ना किसी स्टोरी की याद आई होगी। बट अगेन वी शुड सपोर्ट

खेला जा रहा है। तो आज स्पेन ने पोर्चुगल को 1-0 से हरा दिया, बहुत ही अच्छा मैच रहा, लेकिन एंड में आकर 2 मिनट रहते थे और स्पेन ने विनिंग गोल लगाया और पोर्चुगल को आउट किया। कल एक भारी उल्टफेर हुआ जहां ब्राजील जो है वो नॉर्वे के थ्रू के हाथों उनको शिकस्त मिली। ब्राजील जो कि एक टाइम पे फुटबॉल की सबसे बड़ी टीम मानी जाती थी, लेकिन आज वो नहीं उनका रुतबा रहा और नॉर्वे जो है वो आगे बढ़ गया। आज बेल्जियम ने यूएस को हरा दिया है और

एयर मिला, अगर हम केपे वर्दे की बात करें तो अर्जेंटीना बड़ी मुश्किल से उनसे जीती, और दुनिया भर में अब लोग उस छोटे से नेशन की बात कर रहे हैं. अफ्रीका की कम जो कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत बढ़िया इस वर्ल्ड कप में अभी तक जो है वो प्रदर्शन दिखाया है, और कहीं ना कहीं जो आने वाला टाइम है उसके अंदर अफ्रीकन टीम्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त कंपटीशन लेके आने वाली हैं यूरोपियन टीम्स के लिए, क्योंकि यूरोपियन टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड में मानी जाती हैं अपने

0: होप आप आने वाले टाइम को एंजॉय करेंगे. आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार. तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें. और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी यही शुभकामनाएं कि आप अपने इस टाइम को मस्ती से व्यतीत करें. मुलाकात होगी अगले सोमवार. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड नाइट एंड एंजॉय दिस.
1: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिला.
2: की होया?
3: The time is 9 PM.
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

हमायत मिल भी जावे। कैनेडा दे विच वड्डी कंपनी रॉजर्स वलों स्टेशन जिहड़े ने जी रेडियो स्टेशन बंद करन दा ऐलान कीता गया है। रॉजर्स स्पोर्ट्स एंड मीडिया वलों कनेडा दे चार शहरां विच छे रेडियो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। यह स्टेटमेंट कंपनी ने अच जारी की है। रॉजर्स स्पोर्ट्स एंड मीडिया ने ते वैनकूवर कैलगरी हैलीफैक्स ते किचनर दे विच स्टेशन जिहड़े बंद होणगे। रॉजर्स स्पोक्स परसन ने दस्या कि इहदे नाल 230 नौकरियां जाणगियां जो जिन्हां विचों 80 नौकरियां जिहड़ियां ने सिद्धियां वो रेडियो डिपार्टमेंट विचों जा रही ने। यह भी कहा कि औखे फैसले ने पर जरूरी ने ते रिव्यू किया। असी अपने स्टेशनों नूं असी अपने लिसनर्स का धन्यवाद करते हैं कि लोकल कम्यूनिटी नूं जो उन्होंने हुण तक कंट्रीब्यूट किया। वैनकूवर दे विच जे असी गल करिए तो इस मूव का मतलब है कि इहदे नाल स्पोर्ट्स नैट 650 ते न्यूज़ 1130 जिहड़ा वह बंद हो जाएगा। तो कैलगरी दे विच जिहड़ा 660 न्यूज़ ते जिहड़ा स्पोर्ट्स नैट 960 जिहड़ा अफेक्ट होणगे। वैनकूवर दे विच ट्यूजडे मॉर्निंग रिकॉर्डेड मैसेज उन्हां नूं सुनाया गया ते इहो ही मैसेज होरना स्टेशनां ते भी चल रहे ने। न्यूज़ रेडियो हैलीफैक्स ते न्यूज़ रेडियो किचनर भी बंद हो रहे ने। सो वैनकूवर दे विच रॉजर्स ने कहा कि यह कुछ अपनी जिहड़ी गेम्स वगैरह कवर करते सी इन्हां नूं अपने होर चैनल्स ते लै जाणगे। तो रॉजर्स के कुल 30 कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां ने कैनेडा विच उन्हां विच 44 रेडियो स्टेशन इस कंपनी के ने। सो रॉजर कम्यूनीकेशन ने अनाउंस किया कि यह जिहड़ी कुछ असी दोबारा सिस्टम नूं सैट करन दी कोशिश कर रहे हैं, इहदे नाल वड्डा इंपैक्ट पवेगा। इस तों पहलां बैल वलों पिछले 2 सालां दे विच कई सारे स्टेशन बंद करन दा ऐलान कर दिता गया सी। अगलियां खबरां वल चलदे हां जी। प्रोग्राम साडा समाप्ति वल नूं है। अलबर्टा दे विच आप जी नूं पता है कि हैल्थ केयर दी इनफॉर्मेशन हुण ड्राइवर लाइसेंस दे नाल भी इनकलूड किया जा रहा है, लेकिन प्रोविंस दे अधिकारियों द्वारा वार्निंग दिती जा रही है कि कई लोगों नूं टैक्सट मैसेज आ रहे हैं कि तुहाडा कार्ड जिहड़ा है ये पुराना हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है। तो उन्होंने कहा जा रहा है कि एक नवे इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ सिस्टम वालों तुसीं हुण आ जाओ। इस स्कैम मैसेज है जो कि कहिंदा कि सर्विस कैनेडा वालों असीं आ रहे हैं। उस विच कहा जा रहा है कि नवे हैल्थ कैनेडा रेगुलेटरी ओबलीगेशन के तहत सारे सिटीजन जिहड़े ने उन्हां नूं इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वल नूं जाना पवेगा। ये फ्रॉडलेंट टैक्सट दे विच कहा जाता है कि रिकॉर्ड दे विच दस्या जाता है कि तुहाडा मौजूदा करंट फिजिकल हैल्थ कार्ड जिहड़ा है वह जनवरी 2023 तो पहला जिहड़ा वह जारी किया गया सी ते हुण इह काम दा नहीं रहा। इस स्कैम मैसेज जिहड़े ने जिहड़े अनइंटरप्टड एक्स जिहड़े अनइंटरप्टड एक्सेस होना चाहिए हैल्थ केयर सर्विसिज नूं उहदी इंश्योर करने लिए हुंदा है। ते रिप्लेसमेंट जिहड़ी है कहा जांदा कि तुसीं हुण रिप्लेसमेंट कर लो, इस दी जगह ते नवां कार्ड जिहड़ा लै लो। ते फ्रॉडस्टर जिहड़े ने इस नाल बहुत नुकसान कर सकते ने, तुहाडी परसनल इनफॉर्मेशन भी जा सकती है। ते वार्निंग दित्ती जा रही कि अलबर्टा वासियां नूं जिन्हां नूं लगदा कि इस तरह के मैसेज तो बाद उन्होंने कुछ किया माड़ा मोटा तो उन्होंने परसनल इनफॉर्मेशन जी लीक हुई हो सकती तो वह सरकार नाल जा पुलिस नाल जा फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन नाल जी उन्होंने बैंक वगैरह वो संपर्क जरूर कर लैन। इस तों अलावा जी हाईवे 63 दे विच बहुत सारिया कंप्लेंट्स आईया सी, फ्रस्ट्रेशन सी कि हाईवे 63 जिहड़ा है उहदी रिपेयर नहीं हो रही। से यह जिहड़ा फोर्ट मैकमरी का हाईवे है उहदी कहानी है। असल विच इत्थे एक फोटो जां वीडियो सामने आई सी जिस विच कुछ लोग जिहड़े सी वॉलंटियर जिहड़े सी उह अपने तौर ते इस हाईवे दे विच पए होए खड्डियां नूं भर रहे सी, टोए भर रहे सी। ते प्रोविंशियल सरकार ने हुण अनाउंस कर दिता है कि असीं ही काम करांगे, साडा काम है। तो उन्हां वल्लों 15 मिलियन जिहड़ा है इस हाईवे 63 दी रिपेयर वास्ते एलोकेट कर दिता गया है।

0: बार जरूर गल बात करो। जग्गी ढिल्लों दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नी लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नी आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नी मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे, मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच, ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने, ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो, ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उहनां नूं लगदा तू मूविंग लई कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा, आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।
6: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी पंजाब इंश्योरेंस तों हरपिंदर सिद्धू अते लवप्रीत सिद्धू ने, जिहड़े कि कैलगरी दे विच लंबे समें तों इंश्योरेंस दीआं सेवावां दे रहे ने। जेकर तुसी लाइफ इंश्योरेंस करवानी है जां सुपर वीजा इंश्योरेंस करवाना चाहुंदे हो ते 403-404-3500 ते इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो पंजाब इंश्योरेंस। पिक्सल फोटो स्टूडियो ने इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी जी, जिहड़े कि सवाना बाजार दे विच ने, ते इन्हां दा सुनेहा है कि ए पासपोर्ट साइज फोटो सिर्फ $7 दे विच बना के दिंदे ने। इस तों इलावा जेकर तुसी फैमिली फोटोज़ बनाउणियां ने जां बच्चियां दीआं फोटोज़ करवाउणा चाहुंदे हो, पोर्ट्रेट्स बनाउणा चाहुंदे हो, तां इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो 4039470060 ते पिक्सल फोटो स्टूडियो। प्रोग्राम दे अगले स्पॉन्सर ने जी मदर इंडिया रेस्टोरेंट, जिथे तुसी नॉर्थ ते साउथ इंडियन फूड दा लुत्फ उठा सकदे हो। तवे वाली टिक्की खाण नूं दिल करे ते भावें दिल करे डोसा खाण नूं, ते जे दिल करे चाट खाण नूं ते इत्थे चाट दे लाइव काउंटर्स भी ने, ते नाल ही स्पेशल मालपूड़े भी मिलदे ने, खीर अते गुलगुले हर शनिवार अते एतवार मिलदे ने। ब्रेकफास्ट बफे दे विच सवेरे 10 बजे तो लैके शाम दे 4 बजे तक तुसी एंजॉय कर सकदे हो 40+ डिलीशियस आइटम्स, नॉट 14 इट्स 40 40 मेहमाना तक लई प्राइवेट डाइनिंग भी अवेलेबल है 24/7 24 घंटे खुले हुंदे ने। इह सब तो खास गल है सिटीस्केप लैंडिंग प्लाजा दे विच लोकेटेड ने। इन्हां दा फोन नंबर 403-936-7777 है जी। मदर इंडिया रेस्टोरेंट, मां दे हत्थां वर्गा स्वाद।